0: ସାମନ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ହିଁ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାଫଲ୍ୟ ଏବଂ ଅବସାଦ ହିଁ ଅକ୍ଷମତା, ଅନାସ୍ଥା ହିଁ ପରାଜୟ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र आरंभ करुचु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम प्रथम कंठशिल्पी सूर्यकर दास कानुनगो, गीत रचना रत्नाकर दलाई।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 510ତମ ଭାଗ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଟିକିଏ ପରେ।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
2: सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
3: पूरा देश पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: जब भी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है सुबह से ही हम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: श्रोताओं आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माई गॉव के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप में पोस्ट कर सकते हैं।
5: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है।
6: सुबह 11 बजे
1: मन की बात।

आकाशवाणी संबलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रति मिश्र। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुईदिनिया नुआदिल्ली गस्त सारिकरि गलाकाल ओडिशा फेरिछन्। गस्त समयथि सेमिकन इंडिया 2026 आउ केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणकर अध्यक्षताति हेतिबा राज्य अर्थमंत्री सम्मेलनीति सि जोग देथिले। विमान बन्दरन गणमाध्यम के सूचना देकरि मुख्यमंत्री कहिछन् विकसित भारत लक्ष्य लागि अर्थ जोगाण उपरे सम्मेलनीति आलोचना हेछि। कृषि लजिस्टिक कोल्ड चेन वेयरहाउसिंग लागि केन्द्र राज्य मिलित भाबे अर्थ जोगाइ देबार उपरे मुख्यमंत्री जोर देइछन्। सेमिकन इंडिया थि ओडिशा लागि 23,600 कोटी टंका निवेश प्रस्ताव आसीछे, जेन्थिरु 6,000 नु अधिक प्रत्यक्ष नियुक्ति तयार हे पारबा। इथि 18 कंपनी सहित 1-to-1 आलोचना, 5 सहित गोल टेबुल बैठक आउ 3 कंपनी सहित इच्छापत्र स्वाक्षरित हेछे बोली मुख्यमंत्री सूचना देइछन्। मध्यप्रदेशर सड़क दुर्घटना थी साझन ओडिया लोकंकर जीवन जीवार घटना थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शोक प्रकाश करिछन्। इतार सहित मृतकमानकर परिवार लोक लागि 2 लाख टंका लेखा साहज घोषणा करिछन्। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बिल घटनाथि शोक प्रकाश करवा सहित मृतकमानक परिवार लोकंक लागि 5 लाख टंका लेखा अनुकंपामूलक साहज घोषणा करिछन्। 2026-27 बछर लागि आज श्रीजगन्नाथ दर्शन योजना

0: आरंभ हेबा। उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री प्रभाती परिड़ा आवासी जरिए इतार शुभारंभ करबे। उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा मलकानगिरी कोरापुट और नवरंगपुर जिला लगे आज उपरवेला ई योजनार शुभारंभ करबे बोली पर्यटन विभाग तरफ सूचना दिया जाइछे। आइबा पार्वण के नजर थी रखिकी राइजे शांति श्रृंखला रखबार सहित अपराधी और असामाजिक लोकमानकर लागि कड़ा पदक्षेप नबार के ओडिशा पुलिस तरफ खास अभियान दमन मूल करा जिबा। सारा राइजे ई अभियान आइबा कालठानु मूल हेकरी 30 तारीख तक चलबा। अभियान समय थी जमीन विहीन गिरफ परवाना जारी करबार सहित बेआईन कार्यकलाप विरोध न चढ़ऊ और गिरफ करा जोर दिया जिबा। अपराधी मानकर गतिविधि रुकबार लागि सीमना इलाकान ब्लॉकिंग और सीलिंग करा जिबा बोली ओडिशा पुलिस तरफ सूचना दिया जाइछे। गाँ इलाकार युवबर्गंकु रोजगारक्षम करबार लागि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनार 2 नंबर खेपे प्रशिक्षण ब्याच थी दक्षता तालीम दिया जिबा। देशर 14 राज्य केन्द्रशासित इलाकार 34,920 जन गाँ इलाकार जुआन पिलामनकु तालीम देबार लागि निष्पत्ति हेइछे। आइबा 1 तारिख नु आइबा बछर डिसेम्बर 31 तारीख तक तालीम कार्यक्रम जारी रहबा। इथि पहला खेपे ग्रामीण विकास मंत्रालय तरफ ओडिशा सहित 14 राज्य प्रस्तुति समीक्षा करा जाइछे। सरकारी स्तर भिन्न भिन्न प्रस्ताव और मामला मानकर तुर्ती जांच और सितार समाधान लगी राजस्व विपर्य विभाग तरफ सब जिलापाल मानको कड़ा निर्देश दिया जाइछे। जिला स्तर बिना समीक्षा और अधा अधूरा तथ्य सहित प्रस्ताव पठा जिबार लागि काम थी डेरी होछि इताके अटकाबार लागि भिन्न भिन्न दिग उपरे कड़ा नजर रखबार के जिलापाल मानको अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी निर्देश दैछन। इतार सहित सब चिठी पत्र विभाग ऑफिशियल ईमेल जरिए पठाबार के भी निर्देश दिया जाइछे। पूरी श्रीगुंडीचा मंदिर खूब जल्दी भक्तमानकर लागि खुला जिबा। मंदिर भितरे सौंदर्यीकरण काम शेष हेबार उतरु अक्टोबर मासर पहला हप्ता थी श्रद्धालुमानकु मंदिर दर्शनर सुजोग मिलबा बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी कहिछन। परिचालना कमिटी निष्पत्ति अनुसार श्रीगुंडीचा मंदिर न भक्तमानकर प्रवेश लागि 10 टंका शुल्क धारिज करा जाइछि। आइबा 26 तारीख दिन श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक बसबा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2026-27 बछर लागि संबलपुर जिल्लानु आइबा 22-27 तारीख तक हेबारके थिबा अयोध्या वाराणसी तीर्थयात्रा लागि प्रस्तुति शेष खेपे पहुँचिछे। गलाकाल जिलापालक कार्यालय अतिरिक्त जिलापालक अध्यक्षता ई बाबदे गोटे बैठक हो जाइछे। जात्राथि भिन्न भिन्न जिल्लानु मोट 775 जन तीर्थयात्री और 25 जन सहयोगी भाग नेबे। तीर्थयात्री मानकर सुविधा और सुरक्षा के नजर थी रखिकी सबु प्रकार आनुषंगिक व्यवस्था करा जिबा बोली बैठक नु जना पड़िछे। जापान रो नागोया ठाने गलाकेल 20 नंबर एशिय क्रीड़ा उद्घाटित हो जाइए। एवं 4 तारीख तक हेबारे थी प्रतिजोगिता 45 देश और जगानु आसीबा पखापाखि 11,000 एथलेट 43 खेल थी 469 पदक लगी प्रतिद्वंदिता करे। उद्घाटनी समारोह थी ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भारतीय दल प्रतिनिधित्व करते। उत्तर आंडामान सगर आउतार आखरपाखर इलाकान गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि इतार प्रभाव थी आइबा 6 तारीख तक 6 दिन तक राज्यर बड़भागी जिल्लान घड़घड़ी सहित हल्कानु मध्यम धरणर वर्षा हो पारे बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना मिली। आइबा 24 घंटा भितर कोरापुट और मलकानगिरी जिलार गुटे की जुड़े जगान दुकागड्डी सांगे अति जबर वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कर। एचनिर आंचलिक खबर इन शेष होगा। आरवलर आंचलिक खबर शुनिपारे रात 7:02 थी जुहार।
1: मन की बात प्रधानमंत्री रेडियो पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से करेंगे मन की बात। आकाशवाणी के सभी केंद्र इसे प्रसारित करेंगे।
2: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। बोलता मैं हूं, लेकिन बात आपकी होती है।
3: याद रखिएगा रविवार सुबह 11 बजे

0: स्थानेषु कार्यक्रमाणां संचालनाय विशालराष्ट्रियजालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रियराजधान्यां सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु विशेषशिबिराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्याभियानस्य उद्देश्यं नागरिकनूतनसमावेशने निर्वाचकसूच्यां प्रस्तावितसमावेशनस्य अथवा नामविलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचकसूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
1: आपणमाने कार्यक्रम शुणुछन्ती आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररु। वर्तमान शुणन्तु आजि प्रसारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्करे सूचना। आजि सकाळ 7:10 मिनिटरे स्वास्थ्य सूचना, एथिरे जन्मरु 2 वर्ष पर्यंत शिशुर उत्तम पोषण, ए संपर्करे कहिबे डाक्टर सुशांत कुमार बेहरा। सकाळ 7:30 मिनिटरे कुनी कुनी पिलांक पय हमर कार्यक्रम इटिकिली मिटिकिली, एथिरे खेल ओ नियमक्रमरे जापान रो खेल स्पोगोमी विषयरे कहिबे सरिता मिश्र। सकाळ 7:55 मिनिटरे अमित कुमार दास को कंठरे सुनिबे सुगम संगीत। सकाळ 8:30 मिनिटरे प्रायोजित कार्यक्रम एंटरप्राइज इनक्यूबेशन रिले करि प्रसार करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। परे परे बेतार धारावाहिक नाटिका घर करिथिले, रचना बद्रीनारायण मिश्र, प्रयोजना मुरलीधर पंडा। सकाळ 8:45 मिनिटरे शुणिबे सुगम संगीत। सकाळ 9:00 हिंदी कथाचित्र गीतर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध। दिन 11:05 मिनिटरे संबलपुरी गीतर कार्यक्रम संगीतर लहर। दिन 12:30 मिनिटरे शुणिबे ओडिया लघु संगीत। दिन 1:05 मिनिटरे दयानिधि विभार एवं कृष्णा पटेल को कंठरे सुनिबे संबलपुरी गीत। दिन 1:20 मिनिटरे घर संसार कार्यक्रम प्रगति रे आज रीना दास को सह साक्षात्कार सुनिबे। दिन 2:45 मिनिटरे एवं दिन 3:30 मिनिटरे सुनिबे हिंदी कथाचित्रर गीत। दिन 3:00 किसान संप्रदायर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनधारा उपरे आधारित किसान भाषार कार्यक्रम माका पुपु झक्का झक्का, प्रयोजना एवं उपस्थापना संतोष पिंग। अपराह 4:00 हेलो अनुरोध रह पुनः प्रसारण, पुणी थरे हेलो अनुरोध। संध्या 5:02 मिनिटरे शुणिबे शिल्पांचल कार्यक्रम, एथिरे शिल्प क्षेत्र रे शिल्प संपर्क, ए संपर्क रे कहिबे सुब्रत विश्वाल। संध्या 5:30 मिनिटरे शुणिबे युवबंधु मानक पय हमर कार्यक्रम युववाणी। संध्या 6:05 मिनिटरे प्रायोजित कार्यक्रम एंटरप्राइज इनक्यूबेशन। संध्या 6:10 मिनिटरे शुणिबे गोष्ठी संगीत शिक्षार कार्यक्रम। संध्या 6:30 मिनिटरे प्रसार करिबु केतोटी ओडिया लघु संगीत। राति 7:25 मिनिटरे जिला हालचाल रिले करि प्रसार करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। राति 7:30 मिनिटरे कृषि संसार कार्यक्रम रे शुणिबे संगीत रूपक तर्किथा, रचना बद्रीनारायण मिश्र, संगीत प्रफुल्ल कुमार मित्र, प्रयोजना संतोष पिंग। राति 8:02 मिनिटरे सुभाषिनी शतपथी एवं ममता पाइक रायंक कंठरे शुणिबे सुगम संगीत। राति 8:15 मिनिटरे शुणिबे संबलपुरी देशात्मबोधक गीत। राति 8:30 मिनिटरे समाचार दर्पण रिले करि प्रसार करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। राति 9:15 मिनिटरे स्पॉटलाइट रिले करि प्रसार करिबु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु। राति 9:30 मिनिटरे शुणिबे अखिल भारतीय नाटक कार्यक्रम रिले करि प्रसार करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। राति 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा रिले करि प्रसार करिबु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु। एथिला आज प्रसारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना। आकाशवाणी संबलपुर आमर परवर्ती कार्यक्रम रिले करि प्रसार करूछु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।

नागरिक मानंकु निष्क्रिय हिताधिकारी ठारु सक्रिय अंशीदारे परिणत करिथाय। साधारण परामर्श डिजिटल प्लाटफर्म एवं संरचित मतामत को व्यवहार करी साधारण नागरिक माने एबे सरकारी योजनागुड़ी को डिजाइन परिचालना एवं मूल्यांकन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। सहयोगी आभिमुख्य सामूहिक मालिकाना भावना को प्रोत्साहित करे जहां निश्चित करे जे कार्यक्रम गुड़ी को भल भाव रक्षणाबेक्षण करा जाए एवं अधिक प्रभाव साली भावरे कार्यकारी करा जाए। शेषरे अंतर्भुक्त जातीय विकास को आगे निए। आकाशवाणी संबलपुर सुगम संगीतरे अमित कुमार दास को कंठरे ए भक्ति गीतटी सुनंतु। गीत रचना संथ कवि भीम भोई।

0: सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
3: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
4: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन

0: किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है। टैक्स स्ट्रक्चर कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित लगे कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
2: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
1: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए एबीवीपी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
3: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
6: We have to continuously be watchful of the...
7: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले 2 दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित

0: 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
1: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू, दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: देखै चली छंती तू पुणी कोनटा कहिवार अछि जे कहि दे सुनिबी।
1: अरे देखो मोयांको कथा होइए तुमे मते कहिबा को सुजोग देलो जे कहिबी।
0: तुमे तो भीतर को आसु आसु भोकिला बाघुणी भोली झांपी पड़िलो मु कोन तुमको कहिबा को मना करूथिली ना तुमे कहिले सुनिबा को मना करूथिली
1: पुणी सेई कथा हां कोन ना भोकिला बाघुणी देखो मते रगाओ नै कहूची
0: मु तुमको रगैली कि कथा कहछ जे टुकुना बहु मु परा तुमर वर्णना सुनिबा को चातक परि ओनै बसछि केते बेळु।
1: ओहो ठीक मु कहिबा को गला बेळे टुकुनाटा परा आसी गला एथिरे मोर कोन दोष अछि कहिलो
2: को कथा कि बहु तू बापा को साइकिल कथा कहबा को जाउथिलु कि
1: हां परा
0: होए आज तुमर वर्णना सुनिबा बहु धुए मोर भाग्य रे नै देखो बाहरे पुणी के डाकिलाणी कबाटा खोली की देखो किए आसी
2: मु देखु ची बापा।
3: अरे टुकुना बाबू तुम बापा घरे
2: आसो आसो भीतर को आसो बापा ए बाहर घरे बस
0: किए किरे टुकुना
3: नमस्कार गोकुली बाबू।
0: नमस्कार नमस्कार कौन है कि गिरीश मो पाखरे कौन किसी काम थिला
3: ए साइकिल कथा आज्ञा से विषय रे कथा हवा को आसी
0: अच्छा कथा हो जहाँ को देखो समस्ते खाली से साइकिल कथा कहते आसला बेलू देखुची बारंडारे साइकिलटा थुआ अथच केमी से पुणी लेटिक मो घर को आसला के ही कहूना
3: मुरा से कथा कह आज्ञा
0: अच्छा कह कौन कह तुम शीघ्र कह
2: ता पूर्व मुझे कहूँ बापा।
0: अरे बाबा बड़ लोक कथा हो पिला माने मझीरे पड़ती ना बुझिलु आगो गिरीश कौन कहते कहतु तापरे तू कह
3: ना आज्ञा आगो टुकुना बाबू को कथा शुणतु तापरे मु मो कथा कह
0: देखिलु गिरीशटा गोटे भद्र लोक बोली तोते आगो कहवा को सुजोग दे तू जो हुन्ना को भलिया होचु हौ ठीक अच्छे कह कौन कहचु
2: तमर तो बापा सब बेले खाली से गोटे कथा
0: शीघ्र कम कौन कहबु
2: तू मोर साइकिल टाकु बापा आज मु गिरी संकल को पान दुकान पाखरे देखिली से पचरा उचरा कला पर जणा पड़िला जे गिरी संकल को दुकान पाखरे से साइकिल टी बेस किछि दिन हला अछि।
0: अरे गिरीश टुकुना जहा कहूछि कोन सत काहे कि ना मु सब दिन ऑफिस गला बेले तमर दुकान रु पान नै कि जाय हेले के बे तो ए साइकिल को मु सेठी देखिनी
3: आज्ञा आपण सत कहउछंती एई साइकिल टाकु मो बड़ पु पवन चलाउथिला सेइति पई दुकान पाखरे साइकिल रहु नथिला
0: पवना से परा कॉलेज रे पडुची
3: हां आज्ञा से परा कॉलेज जिबा आसिबारे असुविधा होउची बोली एई साइकिल टा 200 टंका देई जणकु पाखरु किणीची
0: होई हो गिरीश मु परा नीति एई साइकिल तुम दुकान सामना रे थई पानो नेउथिली तुमे मो साइकिल टाकु चिन्हि पारिलोनी
3: केमिति चिन्हिबि आज्ञा एक रे पवना ताकु चढ़ी कॉलेज जीवा आसीबा करूतला दुई रे आपणों साइकिल रो आगरे चक चकिया बास्केट पछरे लगेज कैरियर आउ पुणी घंटी फुल चेन कवर लगी साइकिल टी बराबर चमकुला हेले एई साइकिल टार तो आज्ञा से सब किछि नाही
0: एथर बुझिली चोर साइकिल रो से समस्त जिनिस गुड़ी को गोटे गोटे करी बिकी सारिबा पोरे साइकिल टाकु बिकी देछि माने दियोंक साथिरे खटुली कु भी बिकी देछि
2: सेइ चोर आउ केहि नहंती बापा सिए पोरा मोर संपर्कियो मामू माने नकली दोनै मामू
0: चुप कर कहउछि से चोर रो ना मो सामना रे नेना
1: हयो देखो मो भाई टाकु एमति चोर बोली कहिबाटा कोन ठीक हउछि
0: चोरटा को चोर बोली कहबिनी तो आउ कोनो साधु बोली कहबि
3: आजा आजा मु गला परे आपण माने युक्ति तर्क करूथिबे आगो मो साइकिल किणा बाबद को जों 200 टंका मु देइतिली सेतको मते फेरै दियंतु तापरे जहां विचार करूथिबाटा करूथिबे
0: अच्छा अच्छा एथरो बुझिली तुम्हे ताहा हेले साइकिल बाबद को 200 टंका नेबाकु आछ गिरीश नुहे
3: आजा
0: ठीक अच्छे तुमको तुम प्राप्य देदेबा आरे टुकुना पुलिस स्टेशन को फोन लगैलु मु गिरीश को तांकर प्राप्यटा देवार बंदोबस्त कर दिए
2: हाँ बापा लगौछि तुम्हें साइकिल चोरी रो एफआईआर देथिलो तो
3: हे ये